0: ओ यार, अल्कोहल लाइसेंस अप्लाई करना हेडेक बन गया।
1: स्ट्रेस ना ले, परविंदर डेविस लॉ है ना, न्यू लाइसेंस रिन्यूअल्स ते सारे अल्कोहल लाइसेंसिंग रिलेटेड लीगल इश्यूज दी प्रॉपर हैंडलिंग।
0: इवेंट और टेम्पररी अल्कोहल लाइसेंस भी।
1: हाँ, लाइसेंस अपील्स, पुलिस कार्रवाई, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ते होर सब लीगल काम एक ही छत नीचे। ते एक गल होर, उन्हां नाल गल अपनी लैंग्वेज विच कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी ते पंजाबी। परविंदर डेविस लॉ, अल्कोहल लाइसेंसिंग हुन हो गई इजी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 6421214091।
2: हलवाई स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, असली इंडियन फ्लेवर्स, न्यूजीलैंड स्टाइल विच।
3: डाइन इन द मजा लो हलवाई ते। फ्रेश स्वीट्स, स्नैक्स, चाट, इंडो चाइनीज एंड साउथ इंडियन मेन्यू भी अवेलेबल है। 100% न्यूजीलैंड मेड स्वीट्स, डेली लाइव जलेबी स्टॉल 2 to 9 बजे तक, लंच टू डिनर थाली ऑप्शंस ऑलवेज रेडी। 120 बंदियां दा पार्टी हॉल भी अवेलेबल, अते वेज एंड नॉन वेज केटरिंग भी करदे ने, इनडोर या आउटडोर। विजिट करो हलवाई पापा टोए टोए, 204 ग्रेट साउथ रोड या हलवाई हैमिल्टन, 829 विक्टोरिया स्ट्रीट।
4: बस फेसबुक इंस्टा ते रील्स देखी जाओ, इंश्योरेंस ना करायो।
5: ओ डार्लिंग फिकर नॉट, आपा आज ही जाना इंस्टा श्योर। इंस्टा श्योर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर डीलिंग इन ऑल काइंड ऑफ पर्सनल इंश्योरेंस सर्विसेज,
4: लाइफ, मेडिकल, ट्रॉमा, आईपी एटसेट्रा फ्रॉम इयर्स। इफ यू आर टायर्ड ऑफ ओवरपेइंग योर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस और लुकिंग फॉर बेस्ट ऑप्शन, गेट इन टच टुडे। कॉल 6422-698-7837। इंस्टा श्योर फाइनेंशियल सॉल्यूशन Limited.
6: Bollywood Indian restaurant aao, swaad da lutf uthao.
7: Now open on Sunday, Bollywood Indian restaurant de Sunday special de kya kehne?
6: Sunday special dosa, Amritsari kulcha, chole bhature, pani puri, pav bhaji and much more.
7: Bollywood Indian restaurant, number 4 Thackeray Street, Napier opposite McDonald's, phone 06835-5060.

0: बंदे दोगले नालों, बंदे दोगले नालों ता दुश्मन चंगे, वो जो ललकार के दुश्मनी कट दे या, ऐसे यार ना रखी बिलासपुरिया, नाल रह के जड़ा जो वट दे या,
1: वट दे या।

0: रेडियो स्पाइस लोकल न्यूज बुलेटिन 5 मई 2026 हेडलाइंस। क्राइस्ट चर्च मामले विच जूरी वल्लों गंभीर फैसला। ऑकलैंड विच साबका वकील ते मनी लॉन्ड्रिंग दे दोषां दी सुनवाई। मैनुकाउ पैक एंड सेव पार्किंग फाइन ते विवाद। ताउपो विच कोविड वजह सबसिडी फ्रॉड मामले च अपील खारिज। ओहोपे बीच ते जहरीला समुद्री सप मिलण नाल चौकसी। आखिरी वेले वीजा मिलण नाल पिता अपने नवे जन्मे बच्चे नू देख सकिया। ऑकलैंड विच फूड वेस्ट तो एनर्जी प्रोजेक्ट दी गति हौली। खबरां विस्थार नाल। क्राइस्टचर्च विच एक मामले विच जूरी ने एक व्यक्ति नू रेप अते अबडक्शन वर्गे गंभीर दोषां च दोषी करार दिता है। मामला उस घटना नाल जुड़िया है जिथे एक नौजवान लड़की नाल मुलाकात तो बाद उसनू कार ले जाके हमला किया गया सी। ऑकलैंड विच एक साबका वकील रोहिणी शर्मा उत्ते $600,000 दे मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच कार्रवाई जारी है। उसते दो वख-वख पीड़ितां तो वड्डी रकम लैके उसका गलत इस्तेमाल करन दे दोष हन। मैनुकाउ दे पैक एंड सेव विच एक खरीदार नू वड्डी शॉपिंग करन तो बाद $85 दा पार्किंग टिकट मिलण नाल नाराजगी सामने आई है। इस मामले ने पार्किंग नियमां ते वड्डी चर्चा छेड़ दित्ती है। ताउपो विच कोविड-19 वेज सबसिडी फ्रॉड मामले विच एक कारोबारी दी सज़ा खिलाफ अपील अदालत ने रद्द कर दित्ती है, जिस नाल उस दी सज़ा बरकरार रहेगी। बे ऑफ प्लेंटी दे ओहोपे बीच ते एक जहरीला समुद्री सप मिलण नाल लोकां नू सावधान रहण लई किया गया है। अधिकारियां ने चेतावनी दित्ती है कि इस तरह दे सप खतरनाक हो सकदे हन। एक खुशखबरी विच एक नवे पिता नू आखरी वेले वीजा मिलण कारण ओ अपने नवे जन्मे बच्चे नू मिल सकिया। इस मामले नू लोकां वल्लों सोशल मीडिया ते काफ़ी सहयोग मिलिया। ऑकलैंड विच फूड वेस्ट तो एनर्जी बनाउण वाले प्रोजेक्ट ते काम जारी है, पर इस दी अपटेक हल्ले भी हौली है। इस प्रोजेक्ट दा मकसद कचरे नू गैस अते खाद विच तब्दील करना है। ए सन अज दियां ताज़ा लोकल खबरां। होर अपडेट लई जुड़े रहो रेडियो स्पाइस नाल।
1: ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ FM ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ।
2: ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖੇ ਨੇ।
3: ਚਲੋ

0: यार अल्कोहल लाइसेंस अप्लाई करना हेडेक बन गया।
1: स्ट्रेस ना ले, परविंदर डेविस लॉ है ना, न्यू लाइसेंस रिन्यूअल्स ते सारे अल्कोहल लाइसेंसिंग रिलेटेड लीगल इश्यूज दी प्रॉपर हैंडलिंग।
0: इवेंट और टेम्पररी अल्कोहल लाइसेंस भी।
1: हाँ, लाइसेंस अपील्स, पुलिस कार्रवाई, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ते होर सब लीगल काम एक ही छत नीचे। ते एक गल होर, उन्हां नाल गल अपनी लैंग्वेज विच कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी ते पंजाबी। परविंदर डेविस लॉ, अल्कोहल लाइसेंसिंग हुन हो गई इजी। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल 6421214091।
2: मैं क्या जी, मुंडे दा व्याह तरिया ते तुसी सोचा विच घूमे जांदे हो।
3: भाई मैं सोच रहा सी के व्याह ते डेकोरेशन ते एंटरटेनमेंट दा प्रबंध किवें करिए।
2: इस दी जिम्मेवारी असी देवांगे स्टाइल एनजेड इवेंट्स नो, जो कि इवेंट मैनेजमेंट दे माहिर ने। ए बहुत ही प्रोफेशनल ने ते सारिया ही सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने, जिवें कि घर जां हॉल दी डेकोरेशन, भंगड़े दी टीम, डीजे, लाइव ढोल, जागो, डेकोरेशन हायर, मेहंदी नाइट अते मच मोर। मैं था लकी दा फोन नंबर भी नोट कीता होया, 021-99-4458 या फिर 0921-29563।
4: स्टाइल एंड जेड इवेंट्स, फंक्शन कोई भी होवे उसनु यादगारी बनाउण दी जिम्मेवारी साडी।

0: Yes, मैं जीत गया।
1: वाह बेटा, फोन ते ता बहुत फास्ट है, पर 10, 18 प्लस 7 प्लस 13 यही ता मुश्किल है। स्क्रीन तो अख नहीं हटदी, पर पढ़ाई वेले ध्यान नहीं टिकदा।
2: साडा भी यही हाल सी, फिर असी SIP अबेकस ज्वाइन करवाया। बेटा 10 24 प्लस 58 प्लस 93 प्लस 76
0: 251।
1: वाह, इतनी छेती।
3: SIP अबेकस नाल बच्चों दा फोकस, कंसंट्रेशन ते मेंटल मैथ स्पीड स्ट्रांग हुंदा है। पापा टॉय टॉय विच SIP अबेकस दा 10वां न्यूजीलैंड सेंटर खोल रहा है। फ्री ट्रायल क्लासेस 2-3 मई 2026। कॉल करो 09977-9967। नंबर एक बार फिर तो नोट करो 09977-9967। फोन तो दूर, SIP अबेकस जरूर।
4: की तुसी इमिग्रेशन दे किसे मसले दा हल चाहुंदे हो?
5: की तुहाडा वीजा बार बार रिफ्यूज हो रहे?
4: तां फिर अज ही मिलो जेनिथ इमिग्रेशन सॉल्यूशंस नू।
6: सुखप्रीत कौर, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर, जेनिथ इमिग्रेशन सॉल्यूशंस, न्यूजीलैंड रेजिडेंस, स्टडी वीजा, वर्क वीजा या डेपोटेशन, सेक्शन 61 मिनिस्ट्रियल या ट्रिब्यूनल अपील। कॉल 211-825-718,
4: 211-825-718,
7: या फिर विजिट करो लेवल 1, 706 ग्रेट साउथ रोड, पेनरोज, ऑकलैंड।
4: विजिटर वास्ते कार पार्क अवेलेबल है।

दिल बेच के दिल बरमा ही तो, दिल बेच के दिल बरमा ही तो, दिलों प्यार भुलाया जांदा नहीं। दिल बेच के दिल बरमा ही तो, दिलों प्यार भुलाया जांदा नहीं। सिर रख के यार दे कदमां ते

0: अपना कार लेना हो गया इजी।
1: किवें?
0: बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन, कैशबैक अप टू 1%, फास्ट अप्रूवल, टेन्योर 30 साल तक।
1: सेविंग्स?
0: एक साल दा टर्म डिपॉजिट 3.65% पर एनम, 60 साल तो ऊपर वाले ले एक्स्ट्रा 0.50% सेविंग ते 0.10% डिपॉजिट ते।
1: वाह!
0: विजिट करो
2: 114 डोमिनियन रोड, माउंट ईडन, ऑकलैंड। कॉल करो 0800024404।
0: बैंक ऑफ बड़ौदा, न्यूजीलैंड तो हड्डे सपने हुन आसान।

0: अगर तुसी बीमारी नु जड़ तो खत्म करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि तुसी होम्योपैथी इलाज की विधि अपनाओ। ऑकलैंड विच होम्योपैथी दे मशहूर डॉक्टर डॉक्टर प्रीत कई सालों तो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। डॉक्टर प्रीत गोल्ड मेडलिस्ट ने हर तरह दीयां बीमारियां दा पक्का इलाज करवाउण लई अते प्रोफेशनल सर्विस लई अज ही संपर्क करो डॉक्टर प्रीत नु 2781106 ते या फिर 02112563 56 ते या विजिट करो 415 ग्रेट साउथ रोड पपटोट।
1: घर तां लैणा पर क्रेडिट स्कोर घट होण करके बैंक ने मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दित्ती। उत्तों बैंक्स दे बदल दे इंटरेस्ट रेट
2: परविंदर डेविस लॉ है ना, न्यू लाइसेंस रिन्यूअल्स ते सारे अल्कोहल लाइसेंसिंग रिलेटेड लीगल इश्यूज दी प्रॉपर हैंडलिंग,
3: इवेंट और टेंपरेरी अल्कोहल लाइसेंस भी।
2: हाँ, लाइसेंस अपील्स, पुलिस कार्रवाई, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ते होर सब लीगल काम एक ही छत नीचे। ते एक गल होर, उन्हां नाल गल अपनी लैंग्वेज विच कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी ते पंजाबी। परविंदर डेविस लॉ, अल्कोहल लाइसेंसिंग हुन हो गई इजी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 6421214091।
4: वायर नवी कार बड़ी फुर्ती मारी।
5: आहो, बैंक वालों ता टाइम लगना सी, पर मैं ता लॉजिक फाइनेंस वाले गुरु कंडोला नु कॉल लाई ते 24 घंटे च लोन अप्रूव हो गया।
4: कार लोन या पर्सनल लोन, जस्ट कॉल अवे, गुरु कंडोला मेक्स इट सो इजी। कॉल 0800564424।
6: कारोबार बताना होवे या टैक्स रिटर्न फाइल कराना होवे, युगराज सिंह माहिल सीए ते भरोसा करो। टैक्स होवे या बिजनेस, युगराज सिंह माहिल नाल सब कुछ है आसान।
7: ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दे मेंबर ने।
6: Income tax return, GST return, talana report, tankha and BAYE. Nawa business shuru karna, karobar di salah, loan and bank report, immigration lay finance paper, IRD audit, tax to business growth tak.
7: Yugraj Singh Mahil chartered accountant hai thode naal. Call karo 021-023-46659.
8: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ।
9: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ।
10: ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਹਰਦੀਪ।
11: ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਰਣਜੋਤ।
12: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ।
13: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁਕੀ।
14: ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਮਤ ਸੰਧੂ।
15: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ।
16: ਯੂ ਆਰ ਨਾਓ ਟੂਨਡ ਇਨ ਟੂ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 1 ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
17: 24/7, 365.

टोयोटा, फ्लैटबुश, पापा कूरा विच अपनी स्ट्रांग प्रेजेंस तो बाद हुन डीएच सुपरमार्केट आ गया है हेंडरसन विच। हुन तुहाडियां रोज दियां जरूरतां होण या इंडियन फ्लेवर्स दी क्रेविंग, फ्रेश इंडियन वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस, ग्रोसरी ते डेली एसेंशियल्स सब कुछ मिलेगा। 21 छत थल्ले ओपनिंग दे मौके ते मिल रहे ने स्पेशल ऑफर्स ते ग्रेट प्राइसेस। हुन शॉपिंग होवेगी होर आसान क्योंकि तुहाडा अपना इंडियन ग्रोसरी स्टोर डीएच सुपरमार्केट हुन तुहाडे होर भी नेड़े है। डीएच सुपरमार्केट नंबर 5 मोजल एव हेंडरसन, इन्हां दी नवी ब्रांच खुल चुकी है।

0: आर्ट, किचन वेयर होवे या फिर पूजा आइटम्स, जीवे के रुमाला साहेब, कृपाना, श्री साहेब, कछेरा, कड़े, सर्ब लोदे पांडे, गुरु साहिब दे हर साइज दे फोटो फ्रेम, मंदिर, मंजे, कुंडे, चकले वेल ने, न्यूजीलैंड सर्टिफाइड चुल्ले, मलमल दुपट्टे, रिटेल दे होलसेल, सब कुछ इको छत्थले। गुरु मार्ट 1542158 कोलमा रोड पापा टोयटोय। कॉल 09277226 और व्हाट्सएप 02231721134 और विजिट gurumart.co.nz। नेशन वाइड शिपिंग अवेलेबल।
1: ना फिर लाला इन्नी गल सुन के रब कुछ ना कहू।
2: ले रब क्यों नहीं कहूगा, रब ने कहना भाई लै गए हवा बठिंडे वाले, हजे दो दिन उन्हें दबलनी आ, धमकियां दिंदे चंडीगढ़ीए, फिर पंज दिन उत्थे घलनी आ।
1: ना जे लोग हवा अपनी मर्जी दे नाल चलाउणगे, लाला जी ये भी दसो फिर मीह किदा पवानगे।
2: ओहो भाई मीह दे फोन भी रब नूं इस तरह जाणगे।
3: आप जिस मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं वो या तो इस समय बंद है या कवरेज क्षेत्र से बाहर है।
4: इश्का नूं मैं लिखे लाता सावां दे।
5: सशिकाल जी, मैं सजन रीव ते तुसी सुन रहे हो रेडियो स्पाइस।
6: इश्का दे
7: ਸਸ਼ਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਵਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੌਪ 10 ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ।

देदार है न चुकै भोग गुण इहो होर नाई कोए ना को होआ ना को होए जेवड़ आप

सात संगत जित हर रस पाया, मिल जान नानक नाम प्रगासरा। गुजरी मल्ला पंजवा, काहे रे मन चितवै उदम, जा आर हर जू परया। सैल पत्थर मैं जंत्यू पाए, ता कार जिक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सुके काष्ट हरिया, रहाओ जन्म पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी तरिया। सिर सिर जिक सुभाए ठाकर, काहे मन पो करया। उडे उड आवे सह कोसा, इस पाछे बछरे छरिया। तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन मैं सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकर कल तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारावरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा मल्ला चौथा। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमा पारा। सत्यावे तुझी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दा तारा। हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसार नहारा। हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पे खारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख विखाना। जो सेवै तुझी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावे तुझी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पै जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी, तिन का पो सब गुवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप सुमासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलान तुझी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापे जपे बेअंता। तेरे अनेक पड़े बहु सिमर शास्त्र जी, कर क्रिया खट करम करमता। से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड़ और न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी। तू नेचल करता सोई, तुद आपे पावे सोई वरते जी। तू आपे करे सोई, तुद आपे सृष्ट सब उबाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सब सह का जन होई, आसा मल्ला चौथा। तू करता स्त्यार मैं डासाई, जो तो पावे सोई थीसी। जो तू दे सोई हो पाई, रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनु कृपा करें तिन्ना अमृतन पाया। गुरु मुखलादा मन मुख गवाया, तुद आ विछोड़िया आ मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, बंजोग मेल छड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जान आए सोई जन जाने। हर गुण सदी आख वखाने, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया।

चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुर्सबै तुम कावो, आप हाथ दै मोहि बचावो, सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर इच्छा नज कर दै करिया, सब बैरन को आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास नवरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रच्छा।

सब तेकु आख तेरे नियान्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र बेस सब है बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैना केहो सब तोय बखान्यो। दोइरा सगल

सतगुरु प्रसाद राम कली मल्ला तीजा आनंद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सह सेती मन वजिया वधाइया राव रतन परवार प्रिया शब्द गावने आया सब दोता गावो हरी कीरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारे सब सवारना समनांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे सहबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस दें सो पावे सदा सिफ सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु वितो जिस दिया ए वड़ियाइया कह नानक सुरों संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभागे शब्द वाजे कला च कर तारिया पंच दूत दवस कीते काल कंट कुमारिया तुर करम पाया तुजन को सह नाम हर कह लागे कह नानक तैसुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद

संत साजन तै सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रिया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे मधाम नी महला पंजवा हाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो ए मस्त तजी न जाई नित नित रखो उधार।

रखनहार आप उभारियन, गुर की पैरी पाए काय सवारियन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साथ जिना कै संग पौजल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन, तिस साहेब की टेक नानक मने मां, जिस सिमरत सुख हो सगले तू।

0: टोयोटा फ्लैट बुश पापा कूरा विच अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस तो बाद हुन डीएच सुपरमार्केट आ गया हैंडरसन विच हुन तुहाडियां रोज दियां जरूरतां होण या इंडियन फ्लेवर्स दी क्रेविंग फ्रेश इंडियन वेजिटेबल्स ऑथेंटिक स्पाइसेस ग्रोसरी ते डेली एसेंशियल्स सब कुछ मिलेगा 21 छत थल्ले ओपनिंग दे मौके ते मिल रहे ने स्पेशल ऑफर्स ते ग्रेट प्राइसेस हुन शॉपिंग होवेगी होर आसान क्योंकि तुहाडा अपना इंडियन ग्रोसरी स्टोर डीएच सुपरमार्केट हुन तुहाडे होर भी नेड़े है डीएच सुपरमार्केट नंबर 5 मोजल एव हैंडरसन इना दी नवी ब्रांच खुल चुकी है
1: ओए रकेश की होया
2: ओए यार मेनू सच्ची ओदी बहुत याद आउंदी है इस विदेश दी धरती ते सच्ची मैं ओनु बहुत मिस कर रहा
1: ओए उदास ना हो दस मेनू केदी याद आ रही है तेनू
2: इंडियन खाने दी
1: कमलिया बस इयो गल है चल आपा चलिए चावलास इंडियन रेस्टोरेंट जिथे वेज ते नॉन वेज विच बहुत सारी बेस्ट फूड डिशेस अवेलेबल ने
2: पर कार किथे खड़ी करांगे
1: घबरा ना उथे पार्किंग ले भी वड्डी स्पेस है
3: चावलास इंडियन रेस्टोरेंट 5613615 ग्रेट साउथ रोड मनुकाओ अपने फंक्शंस ते बुकिंग ले कॉल 0926231322
4: चावलास लुधियाना वाले दी ब्रांच हुन न्यूजीलैंड दे विच भी ए फूड बिना किसी फूड कलर तो तैयार करदे ने
5: जदों दे साडे लक्की दे एजेंट ने पैसे मारे ओदो ता साडा ता इमीग्रेशन वालियां तो भरोसा ही उठ गया
6: पर किवियाना इमीग्रेशन उपर तुहाडा भरोसा हमेशा बनया रहेगा क्योंकि ए काम करदे ने पूरी इंटेग्रिटी ते पूरी ट्रांसपेरेंसी नाल चाहे तुसी अप्लाई करनी होवे एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन या फिर तुसी अप्लाई करना होवे किसी भी तरह दा वीजा जिदा की वर्क वीजा स्टूडेंट वीजा विजिटर वीजा पार्टनरशिप वीजा आज ही संपर्क करो पवनदीप सिंह एंड टीम एट किवियाना इमीग्रेशन कॉल 0220955218
7: जायदाद दा फैसला वड्डा हुंदा है असी तुहानू दिंदे हां सही जायदाद दी सही जानकारी ते खरी खरी सलाह ना सिर्फ वेचना ना के खरीदना सिर्फ रिश्ता बनाउणा इमानदारी अते भरोसे नाल अपने पेशेवर रियल एस्टेट सलाहकार नूं चुनो कॉल करो हारकोर्ट्स मैनरेवा दे भरोसेमंद रियलटर्स नव ढल्लों 0223049224 या फिर दलजिंदर पांगली 0210564387

0: यस, मैं जीत गया।
1: वाह बेटा, फोन ते ता बहुत फास्ट है, पर 10 18 प्लस 7 प्लस 13 यही ता मुश्किल है। स्क्रीन तो अख नहीं हटदी, पर पढ़ाई वेले ध्यान नहीं टिकदा।
2: साडा भी यही हाल सी, फिर असी SIP अबेकस ज्वाइन करवाया। बेटा 10 24 प्लस 58 प्लस 93 प्लस 76
0: 251।
1: वाह, इतनी छेती।
3: SIP अबेकस नाल बच्चियां दा फोकस, कंसंट्रेशन ते मेंटल मैथ स्पीड स्ट्रांग हुंदा है। पापा टॉय टॉय विच SIP अबेकस दा 10वां न्यूजीलैंड सेंटर खोल रहा है। फ्री ट्रायल क्लासेस 2-3 मई 2026। कॉल करो 09977-9967। नंबर एक बार फिर तो नोट करो 09977-9967। फोन तो दूर, SIP अबेकस जरूर।
4: ओ यार, अल्कोहल लाइसेंस अप्लाई करना हेडेक बन गया।
5: स्ट्रेस ना ले, परविंदर डेविस लॉ है ना, न्यू लाइसेंस रिन्यूअल्स ते सारे अल्कोहल लाइसेंसिंग रिलेटेड लीगल इश्यूज दी प्रॉपर हैंडलिंग।
6: इवेंट और टेंपरेरी अल्कोहल लाइसेंस भी।
5: हाँ, लाइसेंस अपील्स, पुलिस कार्रवाई, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ते होर सब लीगल काम एक ही छत नीचे। ते एक गल होर, उन्हां नाल गल अपनी लैंग्वेज विच कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी ते पंजाबी। परविंदर डेविस लॉ, अल्कोहल लाइसेंसिंग हुन हो गई इजी। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल 6421214091।
7: ओए राकेश, की होया?
8: ओए यार, मेनू सच्ची ओदी बहुत याद आउंदी है। इस विदेश दी धरती ते सच्ची मैं ओनू बहुत मिस कर रहा।
7: ओए उदास ना हो, दस मेनू केदी याद आ रही है तेनू?
8: इंडियन खाने दी।
7: कमलिया, बस इयो गल है। चल आपा चलिए चावलास इंडियन रेस्टोरेंट, जिथे वेज ते नॉन वेज विच बहुत सारी बेस्ट फूड डिशेस अवेलेबल है।
8: पर कार किथे खड़ी करांगे?
7: कबराना, उथे पार्किंग ले भी वड्डी स्पेस है।
9: चावलास इंडियन रेस्टोरेंट 5613615 ग्रेट साउथ रोड मनुकाओ। अपने फंक्शंस पे बुकिंग ले कॉल 09262313232।
10: चावलास लुधियाना वाले दी ब्रांच हुन न्यूजीलैंड दे विच भी। ए फूड बिना किसी फूड कलर तो तैयार करदे ने।
11: हजारा सपने पर इमिग्रेशन दा रास्ता मुश्किल।
12: मिलेनियल्स इमिग्रेशन NZ नाल सब कुछ आसान।
11: स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, रेसिडेंस, सही राह ते सही सलाह। लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर अनीश राणा ते सौम्या मलिक,
12: तुहाडे भविष्य लई भरोसेजोग नाम। अनीश राणा एंड सौम्या मलिक, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर्स। कॉल करो 02108531295 या 02252800084
11: और विजिट 1 पोलन स्ट्रीट, ग्रे लेन, ऑकलैंड।
12: मिलेनियल्स इमिग्रेशन NZ, तुहाडे सपने साडी जिम्मेवारी।
13: मदर्स डे दे खास मौके ते ग्लिटर ज्वेलर्स ने लगा दिती है सेल, ते तुहाडे लई लै आए ने शानदार स्पेशल्स। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते सिल्वर ज्वेलरी दे उते बहुत सारे स्पेशल्स। ग्लिटर ज्वेलर्स जो कि 2x216 ग्रेट साउथ रोड मेनरेवा दे विच स्थित ने, हर रोज सवेरे 10 बजे तो लेके 5:30 बजे तक तुहाडी सेवा दे विच हाजिर रहंदे ने। नेक्स्ट टू SB बैंक, फोन 02244000 ते। ना फेसबुक ना ट्विटर, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਲਿਟਰ।
14: ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ CA ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਆਸਾਨ।
15: ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ।
14: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, GST ਰਿਟਰਨ, ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਤਨਖਾਹ ਐਂਡ DAYE। ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਲੋਨ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪੇਪਰ, IRD ਆਡਿਟ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗ੍ਰੋਥ ਤੱਕ।
15: ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਕਰੋ 02102346659।
16: ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਮਿਲਟਨ ਲੇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਪੈਮਬ੍ਰੋਕ ਸਟਰੀਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਗ੍ਰੇ ਸਟਰੀਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਰੋਡੋਟੂਨਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਡਿਸਡੇਲ ਕਲੀਨਿਕ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਾਵਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਖਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾ ਨੂੰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092,

0: तू कर मनाइया मैं सब सहार लेना, तेनू होरा नाल वेखण तो पहला मैं खुद नू मार लेना। तेरी आदत सी मैं ताही छुट गई, ते मेरी मोहब्बत सी तू मैं ताही टुट गई। दिल मैं लाया तू समा लंघाया, रुत होरा नाल तू माण लेनी है। शायद तेनू शर्म आ जे, चल कोई ना रब नू जान देनी है।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਫਰੋਮ ਪੈਪੇਟਾਵੀ। ਯੂ ਮੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਅਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਨ 021-373-1588।

रेडियो स्पाइस के काउंटडाउन दे विच नंबर 5 ते बड़ी मेलोडियस आवाज तुसी सुनी स्टिल इन लव जसा ढिल्लों दी फ्यूचर आर्काइव्स ईपी दे विचों ए ट्रैक जिहड़ा असी शामिल कीता है। ते इस हफ्ते दे टॉप 10 ट्रैक दे विच असी पहुंच गए हां हुण नंबर 4 वाला।

0: फते मेरी गल तो सुन जा। तू ठीक ही कहंदा सी, सारे मुंडे एको जे नहीं हुंदे, कुछ तेरे वर्गे भी हुंदे।
1: आहो निरा ही पिटे मुंह।
0: नहीं, निरा ही इश्क। थैंक यू शपाटे।
1: It's okay, Spartan.

0: SHO साहब, I am not lying जी। पुत तू आप टुटे जे साइकिल नाल मेरी नवी गड्डी ते डेंट पाता। मैं ता पुत सिर्फ तेरे लिए देखी सी। क्या की कीता?
1: शरेआम झूठ। इन्हां ने मेरे वाल कोरिया सी।
2: कर दिए तेरे पापे नु दो तीन महीने लिए अंदर।
1: देख लो, दो तीन महीने कट ना होवे।
3: न्यूजीलैंड का पहला 24/7 पंजाबी रेडियो, रेडियो स्पाइस।

0: शहर हो गया खाली, आज की बोलूगी भी साली री बम्बी हा बोले
1: नहीं बम्बी हा बोले।
2: It's an Quintessence Production.

0: सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज मीका सिंह और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो स्पाइस। कीप लिसनिंग, थैंक यू सो मच।
1: सत श्री अकाल, यू आर लिसनिंग टू अ पंजाबी रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट फ्रॉम पेपेटावी। यू मे कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली ऑन 021-373-158।
2: हेलो टू ऑल द रेडियो स्पाइस लिसनर्स, आई एम कियारा अडवाणी
3: जी।

असंख मूरख अंत घोर, असंख चोर राम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वढ़ हत्या कमाहें, असंख पापी पाप कर जाहें, असंख कूड़े यार कूड़े फिराहें, असंख मलेच मल पक खाएं, असंख निंदक सिर करहें भार, नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै सही भली कार।

अमूल व्यापारी है, अमूल भंडार, अमूल आव है, अमूल लै जाए, अमूल पाए, अमूल आसमाए, अमूल धर्म, अमूल दीवान, अमूल तुल, अमूल परवान, अमूल बख्शीश, अमूल निशान,

जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़िए शब

बंद हैं, निर्भुज हैं, सूज हैं, काल हैं, जाल हैं, अला हैं, जा हैं, अनंत हैं, मांत हैं, अलीक हैं, निर्श्रीक हैं, निर्लंब हैं, सम हैं, अगम हैं, जम हैं, भूत हैं, छूत हैं, अलोक हैं, शोक हैं, कर्म हैं, परम हैं, अजीत हैं, पीत हैं, बा है, गा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, भुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे पेखी पेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगाणे, नमो सर्वभौणे, अनंगी अनाथ निरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो

जोग जोगे स्वरंग परम जोगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेतवस धर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तक स्नाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो शिष्टे नमो तंत तंतंग सदा सचिदानंग सर्व प्रनाशी अनूपे रूपे समस्तुल्यवासी सदा सिद्धावत कर्ता अदोर्दर्दंग गंगो कर्ता परम परम परमेश्वरंग पोषपालंग सदा सदासी दाता दयालंग अछेदीय पेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्त सदामंग तेरा जोर चाची छंद जले हैं थले हैं भीत हैं वे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाण्य समस्ति निदाने नमस्त्वंग निनाते नमस्त्वंग परमाते नमस्त्वंग गंजे नमस्त्वंग पंजे नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेश नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो शाह शाह नमो माह माए नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्य नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिवंगी अनंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीज खिजे बीज स्मस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कर्म प्रणाशित सदा सर्वदार सिद्धंग निवासी चर्पण संत प्रसाद अमृत कर्म अमृत तर्म खाले जोगे चाले पोके चाल राजे टाल साजे अखाले तरमंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाणे सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भोगता सर्वंग जोगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंतो प्रसाद आदरूप अनात्मूरत जोन पुरकपार सर्वान त्रिमान दे पेवादुदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत्र तत्र विराजी अवधूत रूपसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त जोन याद सेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा होए फैले अनुराग नाम काम बहीन पेखत तामू न जाए सर्वमान सर्वत्र मान सदा मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिरेक देव पेव न जान ही जय वेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जान ही कह जेव तात्मात न जात जाकर जन्म बहीन चक्र बक्र फिरा चतर चक्र मान ही पुरतीन लोग चौदह के बिखै जग जाप ही जय जाप आद देव अनाथ मूर्त थाप्यो सवै जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्वरचियो संभव गण पंजनहार कालहीन कला संयुगत काल पुरख देश तरम ताम सब परम रहत भूतलक भेष अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्त एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वंजन आदरूप असूत अंगहीन अपंगनातम एक पुरख पार सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेक सर्वशास्त्र न जान ही जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जा कह नित भक्त नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र नाया वही वो चित मदवार संतो

चत्र चक्र कर्ता, चत्र चक्र हर्ता, चत्र चक्र दाने, चत्र चक्र जाने, चत्र चक्र वर्ती, चत्र चक्र प्रति, चत्र चक्र पाले, चत्र चक्र काले, चत्र चक्र पासे, चत्र चक्र वासे, चत्र चक्र मानिया, चत्र चक्र धान्य, चत्र चाची छंद, ना सत्राय ना मित्राय ना परमंग ना पित्राय ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाये ना चित्राय ना मित्राय पर पवित्रय प्रतिशय दिशय दृश्य कृषय भगति चंद तो प्रसाद करते कि अच्छिज देशय के आपिज पिशय के आगंज कर्म के आभिंज परम के आभिज लोक है कि आदित्य शोके के अवधूत वर्ण की विभूत करने के राजम प्रभा है कि धर्मंग तु जहाँ हैं के अशोक वर्ण है कि सर्वा पर्ण है कि जगतं कृति है कि चित्रंग क्षति है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनूप है कि आद देव है कि आप अपेव हैं कि चित्रम बहीन है कि एक दीन है कि रोजी रजा कह रही में रिहा कह कि पाक बेब हैं कि कह बुल गैब हैं कि अवगुल गुना हैं कि शाहन शाह हैं कि कारण कुनिंद हैं कि रोजी देहंद हैं कि राजक रहीम हैं कि कर्मंग करीम।

हैं कि सर्वंग कली हैं कि सर्वंग दली हैं कि सर्वत्र मान्य हैं कि सर्वत्र दान्य हैं कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पा हो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र शोक है कि सर्वत्र पोख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र पाण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप है कि सर्वत्र थाप है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलीम है कि परम फहीम है कि आकल अलाम है कि सैव कलाम है कि हुसनल वजू हैं तमाम रजू हैं हमेशो सलाम है सलीक मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल प्रस्त है लंदुन मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम है रजू उल निदान है हरीफ उल अजीम है रजाय के कीन है अनेक उल तरंग हैं भेद हैं भंग हैं अजीज उल निवाज हैं गनी मुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुकत विभूत हैं प्रभुकत प्रवाह हैं सुयुग सुदा हैं सदैव स्वरूप हैं भेदी अनूप हैं समस्तो पराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तो सलाम हैं सदैव काम हैं निर्वाद स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं अहंगाद रूप है ना स्वरूप है अनंगी नाम है त्रिभंगी दृका कामे त्रिवर्गंत वादे गंजे गादे सुपंग सर्व भागे सुसर्वानरागे त्रिभक स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं कि नरकं प्रणास हैं पृथ्वी उपवास हैं निरुक्त प्रवाह हैं सदैव सदा हैं विभुक्त स्वरूप हैं परयुक्त अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुक्त प्रवाह हैं अनुक स्वरूप हैं।

अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंतो प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं तर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंतो प्रसाद, नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशी, अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते, परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते, अनंगी नाम त्रिभंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पुत्राय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय, निरसाकं शरीक हैं, मितोमिक हैं, सदैव प्रवाह हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगति चंतो प्रसाद, कि जाहर जहूर हैं, कि हाजर हजूर हैं, हमेशा सलाम है, समस्तुल कलाम हैं, कि साहब दिमाग हैं, कि उष्णल चिराग हैं, कि कामल करीम हैं, कि राजक रहीम हैं, कि रोजी दहिंद हैं, कि राजक रहिंद हैं, करीमुल कमाल हैं, कि उष्णल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल शिकन हैं, रासुल विकन हैं, कलंकंग प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजायक रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, कि साहिब करा हैं, कि नरकंग प्रणास हैं, भैस्तुल निवास हैं, कि सरबुल गमन हैं, महसुल रमन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परम परमीश है, समस्तुल अदीस हैं, अदेसुल अलेख हैं, मेसुल बेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, कि जो रज जमाल हैं, कि अचलम प्रकाश है, कि अमितो सुवास हैं, कि अजब स्वरूप हैं, कि अमितो विभूत हैं, कि अमितो पसाएँ, कि आत्म प्रभा हैं, कि अचलंग अनंग हैं, कि अमितो भंग है, मत भार छो प्रसाद, मुनमन प्रणाम गुनगुन दाम, हर बर गंज हर नर प्रभंज, अनगन प्रणाम मुनमन सलाम, हर नर खन पर नर मंड, अनुभव नाश मुनमन प्रकाश, गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम, अंशिज अंग आसन भंग, उपमा पार गत मिदुदार, जल थल मंड दिव्य पंड, जल थल महान दिव्य स्व्यंत, अनुभव ना तत्तुरास, आजान भाव एक कैस दाओ, औं करयाद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरबरकार, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अंशिज गाद आजिज नाबाद, अंजज गाद अनरज बात, अनटुट भंडार अनठट पार, आडिट धर्म अत टीट कर्म, अनबरण अनंत दाता मंत, हर बोल मना छंद तो प्रसाद, करुणालय हैं हर काले हैं, खलखंडन हैं मैं मंडन हैं, जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं, कलकारण हैं सर्ववारण हैं, त्रित केतरण हैं जगेकरण हैं, मन मान्य हैं जगजान्य हैं, सर्वंपर हैं सर्वंकर हैं, सर्वपाश्य हैं सर्वनाश्य हैं, करुणाकर हैं विश्वंबर हैं, सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंडस है खलखंडस है, प्रति पर हैं करुणाकर हैं, अजपा जप हैं, थपा थप हैं, कृता कृत हैं, अमृतामृत हैं, अमृतामृत हैं, करुणाकृत हैं, अकृताकृत हैं, धरणी देत हैं, अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अजबाकित हैं, अमितामित हैं, नरनायक हैं, खल कायक हैं, विश्वंबर हैं करुणालय हैं, नृपनायप हैं सर्वपायक हैं, पवभंजन हैं अर्गंजन हैं, रतापन हैं जपजापन हैं, अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं, कर्ताकर हैं हरतार हैं, परमात्म हैं सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूर्जे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बिंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग ताम संग सात रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो ज्योत ज्योते, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलाकर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नाद।

गुंजत गूढ़ ज्ञान की सुंदर हिंसत ही है राज जारे। भूत पविक भवान के भूपत कौन गण नहीं जात बिचारे। श्री पत श्री भगवान पजेबिन अंत को अंत के धाम सिधारे। तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक सिख है। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पिख है। पवन आहार जती जतार सवै सवे चार हजार के देख है। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है। शुद्ध सिबाह दुरंत पास सासना दुर्जान दलैंगे। भारी गुमान भरै मन मैं कर पर्वत मंख लै नह लहेंगे। तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरे यार अविचारे सार की धार बछैया। तोरत देश मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया। गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया। साहेब श्री सब को सरनायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। दानव देव फनिंद निशाचर भूत पवीक भवान जपेंगे। जीव जीते जल मैं थल मैं पली पल मैं सर था तपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के वो पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र राधव जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजातिक दान अनेक सोमवर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विषण सचिपत अंत से जम फास परेंगे। जय नर श्रीपत के

हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पहन पूज तरे हो सिर काहू लै लिंगरे लटकायो काहू लख्यो रवाची दिशा में काहू पचा को शीश न आयो कऊ बतान को पूजत है पस कऊ मरतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कऊ बतान को पूजत है पस।

सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जब उत्कर्ष कर

द्वार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेच करो रण काता जे अस तुझ तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित वह मरे पुरख जमन पग परे

निराली ज्यों तू चला है तिव चले स्वामी और क्या जाना गुर तेरे जीव तू चला है तिवै चला जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन्ना मिलाहे से हर सदा त्यावे जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारा सुख पावे कह नानक सच्चे साहेब ज्यों पावे तिवें चलावे एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिनकै मनुष्य जिन धुरो लिख आया।

सो भला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरे जिन आप सुमराए नानक तां कै लागो पाए प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा प्रभ के सिमरन उदरे मूचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सबके सुजै प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद महे समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरे से तनवंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से भीमोताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी

प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अनंत कनेरे, प्रभु को

प्रभ कै सिमरन सहसमानी, प्रभ कै सिमरन नह चलयासन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे सेजन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन शरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौह कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन।

मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई, जय महा भयान दूत जम दल तै केवल नाम संग तेरा चलै, जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल सिष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया, लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनक माया रंग तिख नाम बुझावै, हर का नाम जपत अगावै, जय मार्ग एहो जात अकेला, तै हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई, नानुं गुरमुख परम गत पाईए, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत तह पार पराही, अनक बिघन जय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनक जोन जन्मै मर

हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भोगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछनाए वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ओठ स्तानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की

कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वडभागी पाईऐ संत की सेवा नाम त्याईऐ नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शस्त्र सिमरत बख्यान।

साधना करै मन ते कबहू ना बिख्या टरै जल धूबे बहु दे अनीत शुद्ध कहां होए काची भीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहु मूच बहुत सियाणप जमका भौ व्यापै अनक जतन करत।

साध संग इहो में शूरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की शरणी परै, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बलबल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जांका मिटे अवमान, आपस को जो जाने।

करन करावन हार स्वामी सगल घटांके अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते होए नानके अवर ना जान सकोए सर्व धर्मे श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप।

अष्टपदे दस वस्तु लै पाछे पावे एक वस्त कारण बेखोट गोआवे एक पीना दे दस पीहर ले तो मूड़ा को कहां करे जिस ठाकर स्यों नाही चारा ताको की जाय सद नमस्कारा चांके मन लागा प्रभ मीठा।

कछबहर शाहो ले अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोबे, बहर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस तिस आज्ञा राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरखी छाया स्यों रंग लावे, ओ बिनसे ओ मन पुछतावे। जो दिसे सो चालन हार, लपट रिहो तैं अंध अंधार, बटा

अव तांके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जय घट बस्यो हर नाओ नानक तांके बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर।

तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उनजन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस पावै तिस लै लड़ लाए, थान थनांतर रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा

देव अष्टपदी जहें प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जहें प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस को सिमरत परम गत पावे जहें प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जहें प्रसाद ग्रह संग सुख वसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जहें प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जहें प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसे त्याग कत अवर लुभाव है जहें प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय जहें प्रसाद तू सबको माने मुक्ता को जस रसन बखाने जहें प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पाव है नानक पत सेती घर जाव है जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताकै जय प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद अपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अस्व अस्त अस्वारी मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिल्ख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत तिसे त्याई तिसे त्याए जो एक अलख है ईहां ऊहां नानक तेरी रखै जय प्रसाद करे पुन बहु दान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहे गुरु प्रसाद नानक जस कहे जय प्रसाद सुने करन नाद जय प्रसाद पेखे बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गुआए सोहर गुन गाओ प्रभ कृपा ते हुई प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निदान प्रभ तेरी मया आपो कछु न किन्हू लिया चित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ स्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनबंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सबहूत नबीरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हूंता वै साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग न बिगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही हो ताप साध के संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस्त अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध के संग बसै थान ऊचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै
साधु के संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म दाए करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कुलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद वसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुन गाओ। साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग घटघट डिठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। साध की उपमा तह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बनाई, नानक साध प्रभु भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवरना पिख है एक सबिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप। जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोख। जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान। जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक। ज्यों वसुद्धा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का एहो गुनाओ। नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। जैसे मैं न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुई प्रगास। जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा। मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पै। नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना। आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस। ब्रह्म ज्ञानी का

जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की सो

पाइए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दिसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगे प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म ही धावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उत्सोग सदा अनंत तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो बरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर रख

होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमै आउंदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान

और कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया शर्म माहे, कई कोट पर देश प्रमा है, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देशपु मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानम इंद्र शिर छत्र, सगर समगरी अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत अरसास्त्र,

साध नानक सच कहे, कबहू होए पंडित करे बखयान, कबहू मोन धारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ इशनान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भर मैं भरमिया, नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावे, ज्यो प्रभ भावे तिवे नचावे, जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू साध संगत एहु पावे, उस अस्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रत्ते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान, सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े हंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिस कै अंतर राज अवमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने मैं जो बनबंत, सो होवत बिस्तां का जंत, आपस को कर्म वंत कहावे, जन्म मरे बौ जौन प्रमावे,

अगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही

गीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देह सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटेला कोट धावै तृप्त न आवे माया पाछे पावै अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथै सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बट भागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करनी हार इस कै हाथ कहां विचार जैसी दृष्ट करै तैसा हुए आपे आप आप प्रभ सोए जो कि

ना जाए, नानक सद ही रिहा समाए। आप उपदेसै समझे आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्तार, सब कछ उसका उ करने हार। उसते भिन कहो किश होए, थान थनांतर इकै सोए। अपने चलत आप करने हार, कौतक करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किनै वखियानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदे किनै बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरबन बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र।

आख मानुक की तू प्री त्याग तिस्ते परै नाही किछ कोए सर्ब नरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साथ तेरे की चरणी पाओ नानक के मन ए अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर अनद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिए कर ताकै राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर ग्रिस्त में भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देवहारे अवगाहे पिता का जन्म कह जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से तैं गुण में जाकू परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके अस्त

नाना चलत करे खिन माहे, पूर रिहो पूर्ण सब ठाए। नाना बिद कर बनत बनाई, अपनी कीमते आपे पाई। सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नान खर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जांका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। कुरतूत सत सत जांकी बाणी, सत पुरख समहे समाणी। सत कर्म जांकी रचना सत, मूल सत सत उत्पात। सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुरु ते पाई। सत वचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश। सत निरत बूझे जे कोए, नाम जपत तां की गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट सो करने हार, और न बूझ करत विचार। करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस भावै सो वरतिया। बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। प्रभ कै रंग राजन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काटन हार, जां कै संग तरै संसार। जन का सेवक सो बट भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। श्लोक आद सच जुगाद सच, है भय सच नानक होसी भय सच। अष्टपदी चरण सत सतपर संहार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत ध्यावनहार। आप सत सत सब धारी, आपे गुण आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, कर्म करावन तिन मूल पछानिया। जा कै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। पैते निरपोहे बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे समाना। बस्त माहे लै बस्त गडाई, ताको भिन्ना कहना जाई। बूझे बूझन हार बबेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रभ पालनहारा, सेवक की राखै निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक साथ साथ समारै। अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै। अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत राखै, ता की गतमित कोए न लाखै। प्रभ के सेवक को न पहुंचै, प्रभ कै सेवक ऊंच ते ऊंचै। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दृश प्रगटाया। नीकी कीरी में कल राखै, भस्म करे लश्कर कोट लाखै। जिसका सास न काटते आप, तांको राखत दे कर हाथ। मानस जतन कर्तव भांत, तिसके कर्तव वृथे जात। मारे ना राखे अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलक बढ़ाणी। बारंग बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत ए मंत्रन त्रपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नाही दिसताया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। बोलो जस जेबा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। करे भगत आत्म के चाए, प्रभ अपने सु रहे समाए। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कै एक न जानो। आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कौ नानक से जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट ले, मन तने अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसकै दर सब पाप मिटावै। अबर सियाणप सगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जा न हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ।
तिसकै संग सिख उद्रै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिखी करै प्रतपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। सिख की गुरु दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिखै बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते हाटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। आपस को कर कछ ना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बीचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत हुए नह कामी, तिसको हो प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस विश्वै गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुरु को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ भरम। सह सियान पलया न जाइए, नानक ऐसा गुर बडभागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गह गवे। सुनकर बचन करन अगाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखयो जांका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मलाए। जेबा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बो न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निरवैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हिरदे सिमरै। सत बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। कि हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमृत सोए। उस पुरख का नाही कदी विनाश, जां के मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया कै संग न लेप, मन में राखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमो दुख तह ते नासे। तप्त माहे ठांड बरताई, अनंत पिया दुख नाठे भाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पौ चुका निरपो हो बसे, सगल ब्याद मनते खै नसे। जिसका सातन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चुके परम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला धार जिन सगली मोई। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोई, सर्व निरंतर इको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कर धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चाले बिन भजन, बिख्या

कल ताती ठांडा हरनाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ। भौ बिल सह पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसै अवनासी कौ नान काटी जम फासी। तत् विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा। आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरुदेव। क्यों रतन जन्म का हुई उधार हर हर सिमर प्राण उधार। अनक उपाव न छूटन हारे सिमरत सास्त वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए। संगन चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटांबर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता। राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप

सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुन गाओ। गुन गावत त्रि उत्तर समैल बिनस जाए होमें बिखफैल। होय अचिंत बसै सुख नाल सास गिरास हर नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना साध संग पावे सच तना। हर पूंजी सच करो बिहार इहां सुख दरगे जयकार। सर्ब नरंतर इको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख। इको जप इको सलाहे एक सिमर इको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहो प्रव्याप। अनक विस्तार एक ते पै एक अराध पराशित गए। मन तन अंतर एक प्रवराता गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी। जाजक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नितनीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभसार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर

संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नामरते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेव कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुनी श्रद्धा सपूरी रव रहा सत्संग।

प्रेम रस जाओ मन तन यंत्र एही सुआओ नित्रों पेख दर्श सुख होए मन बिकसै साध चरण धोए भक्त जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर मैया गुर प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटां।

गनी तब बंद मुकुत कहो किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन उतार। जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चलत आप करनी हार नानक ठाकर अगम अपार। अबनासी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहां बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन छुटै कौन बंद।

कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तै छल छिद्र लगत कह कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तै किसे भूख कवन तृप्तावै करण करावन करनी हार नानक करते का नाही सोमार जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्व कला आपे प्रवीन तह वेद कतेब कहां को चीन जब अपने आप उरतारै तो सगन अपसगन कहां बिचारै जय अपन ऊच अपन आप नीरा तो कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अछल अशेर भेद समाया ऊहां किसे व्याप्त माया आपस को आपे आदेश तह गुण का नाही प्रवेश जय एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपन आप पतियारा ते कौन कथे कौन सुन नेहारा बहु बेअंत ऊचते उच्चा नानक आपस को आपे पहुंचा जय आप रच्यो प्रपंच।

आपन खेल आप कर दिखै, खेल संकोचै तो नानक इकै। जय अवगत भगत है आप, जय पसरे पासार संत प्रताप। दोहूं पाखा आपे धनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतुक करे अनंत चोज, आपे रस भोगन निर्जोग। जिस भावै तिस आपन नाए लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथा

लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देका करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का एह स्वाओ आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय वसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दोय लेहो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दिखया जिस मन बसै तिस साच प्रिख्या मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच वापार करो वापारी दरगे निभे खेप तुम्हारी इक्का टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे रखनहार ते आए निरपौ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत।

मत पूरी अमृत जां की दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रिष्ट चरण कमल जां के अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै।

पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के वचन उमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकै नस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत बाजे सुन सुन अनंद करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल महात के माथे नानक उदरे तिनके साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रवाह मिलाए मिट गए बैर भय सवरेन अमृत नाम साध संगलैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते।

0: music.
1: Today's big music.
0: Your music, your station.
2: इंसान नू अपनी जरूरतां दे मुताबिक ही जिंदगी जीनी चाहिए है, ख्वाहिश दे मुताबिक नहीं।

0: पासे हर थां मेरा ना मेरा ना हां
1: मैं दा रेडियो सुनना
2: काका तू फिर पढ़ लिख के उथे ही रहो ना रेडियो दा मतलब है स्पाइस एफएम
3: रेडियो मतलब स्पाइस एफएम
2: रेडियो स्पाइस 88 एफएम
4: हर वक्त तुहाडे अंग संग न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी एफएम रेडियो

0: मैं अपना वीजा इमिग्रेशन स्टार तो करवाया आ। इन्हां ने मेरे पेपर वर्क इतना सॉलिड किया कि मेरा वीजा चार्ट अप्रूव हो गया।
1: जो कहते ने उही करते ने, इमिग्रेशन स्टार वाले भरोसे नाल चलते ने। पिछले 8 साल तो मनाकाओ साउथ ऑकलैंड च तुहाडी सेवा च हाजिर ते माहिर ने ए एम्प्लॉयर एक्रीडिटेशन।
0: जॉब चेक एप्लीकेशन, एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा, विजिटर वीजा, स्किल्ड माइग्रेंट रेसिडेंट और वर्क टू रेसिडेंट वीजा अंडर ग्रीन लिस्ट, सेक्शन 61 रिक्वेस्ट वर्गिया सेवावां लई संपर्क करो इमिग्रेशन स्टार दे लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर
1: विनोद जुनेजा नू। ओवर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस बी प्रेजेंटेड इंक्लूडिंग सक्सेसफुल ग्रांट ऑफ रिफ्यूजी स्टेटस। फर्स्ट कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। आज ही कॉल करो 02259280777 और 02215934777।
2: त्योहार आ रहे ने, मिठाई कितने होनी है?
3: ले दस, इको जगह है जिते मिलती है देसी घ्यो दी शुद्ध मिठाई। मंडे टू फ्राइडे हर रोज नवे स्पेशल्स, कड़ी चावल, मसाला डोसा, राजमा चावल, पिज्जा, पनीर डोसा। शिवानीज रेस्टोरेंट, नाम ही काफी है।
2: shivani.co.nz पे जाके ऑर्डर ऑनलाइन करो। न्यूजीलैंड कितने भी शिवानीज रेस्टोरेंट, 905 डोमिनियन रोड, माउंट रॉस्किन, 23 एरिक बेकर प्लेस, पापा टोय टोय। बोले रिश्तिया च मिठास, शिवानीज रेस्टोरेंट है खास। शिवानीज, वेयर टेस्ट मैटर।
4: करता लेना पर क्रेडिट स्कोर घट होने करके बैंक ने मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी। उत्तो बैंक दे बदल दे इंटरेस्ट रेट्स ते आ हैवी पेपर वर्क दा लोड, बहुत कंफ्यूजन है।
5: ओ जी हुन फिकर नॉट, द मॉर्गेज सप्लाई दे मॉर्गेज एडवाइजर नीत तमान तुहानू प्रॉपर गाइडेंस दिंदे हन ते सही पाथवे दे के तुहानू लोन ले एलिजिबल करवांदे हन। फर्स्ट होम बाय करना होवे, मॉर्गेज रीफाइनेंस, बाइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन लोन, बिजनेस लोन एंड लोन टू बाय कार और ट्रक और टू पे IRDA टैक्स। बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड टेलर्ड फाइनेंशियल एडवाइस ले आज ही कॉल करो सरकार। नीत तमान 02762863 3 8 6 3 3 8

0: 8:31 हो चुके हैं और मनजीत कौर जी जो कि मैंने वे तो जुड़े हुए ने इन्हां नूं भी शामिल करना चाहेंगे प्रोग्राम दे विच और दूसरे पासे गल करांगे खास जो है पंजाब दे मुद्दियां दी न्यूजीलैंड दे विच जिहड़े काफ़ी मुद्दे हैं और दस्सिया जा रहा है कि निकोला वेलस जो है इन्होंने पार्लीमेंट दे विच काफ़ी खिचाई की है शेन जोन्स दी और इन्हां दा जिहड़ा है काफ़ी अपनी स्पीच दे दौरान गुस्सा फुटिया शेन जोन्स दे उत्ते उन्होंने कहा कि शेम ऑन यू शेन जोन्स निकोला वेलस ने पार्लीमेंट दे विच अपने गुस्सा जिहड़ा अपनी पड़ास है वह कढ़ी है इस वक्त साढ़े नाल नवतेज रंधावा जी जुड़ गया और अज दियां लेटेस्ट अपडेट्स लैके उन्होंने भी शामिल करते प्रोग्राम दे विच सो गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल नवतेज जी
1: सत श्री अकाल सुंदर जी सारे ही लिसनर्स नूं प्यार भरी सत श्री अकाल सो जिथे आपां न्यूजीलैंड दे विच तेल दे भंडार जिहड़े ने
0: जी
1: दोबारा वाधा देख रहे हैं सिंगापुर कंट्री जिहदे बारे असीं हार्डली सोचा करदे सी
0: जी
1: कि इन्हां ने साडा की कर लैणा की सवार लैणा
0: जी
1: उन्हां ने मूहरे जा के प्राइम मिनिस्टर ट्रेड मिनिस्टर ते बाकी जिहड़े सबान ने इनकलूडिंग निकोला वेलस फ्यूल मिनिस्टर उन्हां ने अपनी रजोई की नैचुरली उस ट्रेड अग्रीमेंट दे नाल सदरी एक गल बहुत इंटरेस्टिंग हुई है
0: जी
1: कि गल फिर सिर्फ व्यापार दी नहीं हुई फिर इस सारे दे विच सब तो इंपोर्टेंटली डील टेक्नोलॉजी दी भी हुई ते खास करके जिहड़े सिंगापुर दा कोरिडोर है उस नूं न्यूजीलैंड दे नाल जोड़दिआं जिहड़े लंबे शिप्स चलदे ने
0: उहनां
1: दे विच न्यूजीलैंड दे लई सिंगापुर कितना एक स्टेबल पोर्ट बन सकदा इस दीआं गल्लां भी होईआं ने जिस नूं लै काफ़ी उत्साह जिहड़ा उह दिखाया जा रिहा है अच्छा एक खबरां दे विच जिथे न्यूजीलैंड आपां सारे देख रहे हां इन्हां दिनां दे विच काफ़ी हलचल है अपने खास करके जिथे न्यूजीलैंड दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर नूं लैके डिस्कशनां काफ़ी ने कि जिहड़ा RMA है उसनूं अबोलिश कीता जा रहा है सो इस सारे दे विच रिसोर्स मैनेजमेंट एक्ट नूं चेंज करदिआं अगे किहड़ा नवां जिहड़ा खास करके लॉ इन्हां सारिआं नूं इकट्ठा करदा नज़र आएगा उसका खुलासा कल जिहड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर ने उन्हां ने कर दिता कहिंदे कि एक वन स्टॉप शॉप जिहड़ी है असीं खड़ी करन जा रहे हैं जिथे सारा कुछ कट्ठिआं एक ही जगह दिते हो पाएगा सो एक नैचुरली शुभ शगन जिहड़ा उसनूं मन्निआ जा रहा है ओवरसीज तो लिआंदा बटर बहुत महंगा पै गया न्यूजीलैंड दे विच सुंदर जी
0: जी
1: सो जिथे न्यूजीलैंड दा बटर एक समय $12-13 तक पहुंच गया ते उस दे बाद फिर अमरीका तो बटर जदों न्यूजीलैंड च लिआ के बेचा गया ते वह बटर दा रंग जिहड़ा सी वह बहुत जिहड़ा फिक्का चिट्टा जिहा रंग सी इस नूं लै के सारे ने कहा कि यह बटर आ ते ये बटर भी है क्योंकि अपना न्यूजीलैंड का बटर जिहड़ा
0: बिल्कुल
1: काफी जिहड़ा पीले रंग का संघना
0: बिल्कुल
1: सो इस नूं लै के एक होर डिबेट छिड़ पई कि ये किदा हो गया कि न्यूजीलैंड का बटर महंगा न्यूजीलैंड दे विच ही
0: एक्सपेंसिव हां जी
1: ते उधरों अमरीका का लिआंदा बटर सस्ता लगदा इन्ना वधिया नहीं हैगा ये किदा सारा कुछ हो रहा सो इस दे लई एक्सप्लेन डेयरी कोऑपरेटिव्स नूं काफी वड्डे पद्धर ते करना पिया फर्क सारिआं नूं दस दईए जो कि बहुत इंपोर्टेंट है बहुत वार आपां इह डिसीजन इदां सोच के नहीं बनाउंदे सुंदर जी न्यूजीलैंड दा बटर जिहड़ा है
0: जी
1: ग्रास

0: ओ यार, अल्कोहल लाइसेंस अप्लाई करना हेडेक बन गया।
1: स्ट्रेस ना ले, परविंदर डेविस लॉ है ना, न्यू लाइसेंस रिन्यूअल्स ते सारे अल्कोहल लाइसेंसिंग रिलेटेड लीगल इश्यूज दी प्रॉपर हैंडलिंग।
0: इवेंट और टेम्पररी अल्कोहल लाइसेंस भी।
1: हाँ, लाइसेंस अपील्स, पुलिस कार्रवाई, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ते होर सब लीगल काम एक ही छत नीचे। ते एक गल होर, उन्हां नाल गल अपनी लैंग्वेज विच कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी ते पंजाबी। परविंदर डेविस लॉ, अल्कोहल लाइसेंसिंग हुन हो गई इजी। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल 6421214019।
2: की तुसी इमिग्रेशन दे किसे मसले दा हल चाहुंदे हो?
3: की तुहाडा वीजा बार बार रिफ्यूज हो रहा है?
2: तां फिर अज ही मिलो जेनिथ इमिग्रेशन सॉल्यूशंस नू।
3: सुखप्रीत कौर, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर, जेनिथ इमिग्रेशन सॉल्यूशंस, न्यूजीलैंड रेजिडेंस, स्टडी वीजा, वर्क वीजा या डेपोटेशन, सेक्शन 61, मिनिस्ट्रियल या ट्रिब्यूनल अपील। कॉल 211-825-718-211-825-718
4: या फिर विजिट करो लेवल 1-706 ग्रेट साउथ रोड, पेनरोज, ऑकलैंड।
2: विजिटर वास्ते कार पार्क अवेलेबल है।
5: ध्यान नाल सुनो साउथ ऑकलैंड वाले, साउथ ऑकलैंड मोटर्स लेके आया है बिगेस्ट सेल एवर। हुन गड्डियां दी कीमतां ते वड्डा वार, बिग डील्स, बिग चॉइस, बिग सेविंग्स, हर बजट दी गड्डी लई वड्डी छूट ते बेमिसाल बचत। ए मौका हथों ना जान दियो। 11 मई तो 17 मई तक ही साउथ ऑकलैंड मोटर्स, मैनिको, बॉटनी अते पुकी कोई विखे अपनी मन पसंद की गड्डी घरे ले जाओ सब तो वधिया डील्स दे नाल। विजिट करो southauckland motors.co.nz ते।
6: सुनिया तुसी, हुन अपना कार लेना हो गया इजी।
1: किवें?
6: बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन, कैशबैक अप टू 1%, फास्ट अप्रूवल्स, टेन्योर 30 साल तक,
1: सेविंग्स,
6: एक साल दा टर्म डिपॉजिट 3.65% पर एनम, 60 साल तो ऊपर वालियां लई एक्स्ट्रा 0.50% सेविंग ते 0.10% डिपॉजिट ते।
1: वाह,
6: विजिट करो
7: 114 डोमिनियन रोड, माउंट ईडन, ऑकलैंड। कॉल करो 0800024404।
6: बैंक ऑफ बड़ौदा, न्यूजीलैंड, तुहाडे सपने हुन आसान।
4: जायदाद दा फैसला वड्डा हुंदा है, असीं तुहानू दिंदे हां सही जायदाद दी सही जानकारी ते खरी खरी सलाह। ना सिर्फ वेचना, ना के खरीदना, सिर्फ रिश्ता बनाउना। इमानदारी अते भरोसे नाल अपने पेशेवर रियल एस्टेट सलाहकार नूं चुनो। कॉल करो हारकोर्ट्स मैनूरेवा दे भरोसेमंद रियलटर्स, नव ढिल्लों 0223049224 या फिर दलजिंदर पांगली 0210564387।
6: fencingbhi.com।
8: Indelible Homes, quality stand alone ate terraced houses vich ek bahut hi bharose yog naam, e bahut hi wajib keematan vich tuhade layi design and build kar sakde ne, ya fir subdivisions ate apne plan mutabik vi tusi build karwa sakde ho। Visit karo indelibalehomes.co.nz te।
9: वाह यार, नवी कार बड़ी फुर्ती मारी।
10: आहो, बैंक वालों ता टाइम लगना सी, पर मैं ता लॉजिक फाइनेंस वाले गुरु कंडोला नू कॉल लाई ते 24 घंटे च लोन अप्रूव हो गया।
9: कार लोन या पर्सनल लोन, जस्ट कॉल अवे, गुरु कंडोला मेक्स इट सो इजी। कॉल 0800-564-424।
11: कारोबार बदाना होवे या टैक्स रिटर्न फाइल कराना होवे, युगराज सिंह माहिल CA ते भरोसा करो। टैक्स होवे या बिजनेस, युगराज सिंह माहिल नाल सब कुछ है आसान।
12: ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दे मेंबर ने।
11: इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न, सालाना रिपोर्ट, तनखा एंड BAYE। नवा बिजनेस शुरू करना, कारोबार की सलाह, लोन एंड बैंक रिपोर्ट, इमिग्रेशन ले फाइनेंस पेपर, IRD ऑडिट, टैक्स तो बिजनेस ग्रोथ तक।
12: युवराज सिंह माहिल चार्टर्ड अकाउंटेंट है थोड़े नाल। कॉल करो 0210234669।
13: जदों दे साडे लकी दे एजेंट ने पैसे मारे आ, उदों दा साडा ता इमिग्रेशन वालियां तो भरोसा ही उठ गया।
14: पर किवियाना, इमिग्रेशन उपर तुहाडा भरोसा हमेशा बनिया रहेगा, क्योंकि ए काम करदे ने पूरी इंटेग्रिटी ते पूरी ट्रांसपेरेंसी नाल। चाहे तुसी अप्लाई करनी होवे एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन, या फिर तुसी अप्लाई करना होवे किसी भी तरह दा वीजा, जिदा कि वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, पार्टनरशिप वीजा, आज ही संपर्क करो पवनदीप सिंह एंड टीम एट किवियाना इमिग्रेशन। कॉल 0220955218 0223288116।
15: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ

0: यार कल एक चक्कर पै गया ते पुलिस ने हुन इंटरव्यू लई बुला लिया, समझ नहीं आ रहा की कहना।
1: ओ कोई ना, तू फोन मिला ते टेंशन कटा, गुल लॉ कोल जा। गुल लॉ दे बैरिस्टर गुल केसरानी, जिन्हां कोल है 20 साल तो वध दा तजुर्बा, फैमिली वायलेंस, ट्रैफिक, ड्रिंक एंड ड्राइव, सेक्सुअल असॉल्ट, ड्रग्स डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, मिसकंडक्ट या फिर न्यूजीलैंड पुलिस दी इन्वेस्टिगेशन, ए तुहाडे हर तरह दे कानूनी मसले दे देणगे हल, ओ वी बिना किसे ढिल।
0: ए 9 साल न्यूजीलैंड पुलिस दे सीनियर प्रोसिक्यूटर रह चुके ने।
1: कॉल बैरिस्टर फारूक गुल केसरानी 022-3530-872।
2: यस, मैं जीत गया।
3: वाह बेटा, फोन ते ता बहुत फास्ट है, पर 10 18 प्लस 7 प्लस 13 यही ता मुश्किल है। स्क्रीन तो अख नहीं हटदी, पर पढ़ाई वेले ध्यान नहीं टिकदा।
4: साडा भी यही हाल सी, फिर असी SIP अबेकस जॉइन करवाया। बेटा 10 24 प्लस 58 प्लस 93 प्लस
2: 76 251।
3: वाह, इन्नी छेती।
5: SIP अबेकस ना बच्चियां दा फोकस, कंसंट्रेशन ते मेंटल मैथ स्पीड स्ट्रांग हुंदा है। पापा टॉय टॉय विच SIP अबेकस दा 10वां न्यूजीलैंड सेंटर खुल रहा है। फ्री ट्रायल क्लासेस 2-3 मई 2026। कॉल करो 09977-9967। नंबर एक बार फिर तो नोट करो 09977-9967। फोन तो दूर, SIP अबेकस जरूर।
6: जायदाद दा फैसला वड्डा हुंदा है, असी थानू दिंदे हां सही जायदाद दी सही जानकारी ते खरी खरी सलाह। ना सिर्फ वेचना, ना के खरीदना, सिर्फ रिश्ता बनाउणा। ईमानदारी अते भरोसे नाल अपने पेशेवर रियल एस्टेट सलाहकार नूं चुणो। कॉल करो हारकोर्ट्स मैनुरेवा दे भरोसेमंद रियलटर्स नव ढिल्लों 022-304-9224 या फिर दलजिंदर पांगली 02105643870।

0: यार कल एक चक्कर पै गया ते पुलिस ने हुन इंटरव्यू लई बुला लिया, समझ नहीं आ रहा की कहना।
1: ओ कोई ना, तू फोन मिला ते टेंशन कटा, गुल लॉ कोल जा।
2: गुल लॉ दे बैरिस्टर गुल केसरानी जिन्हां कोल है 20 साल तो वधदा तजुर्बा, फैमिली वायलेंस, ट्रैफिक, ड्रिंक एंड ड्राइव, सेक्सुअल असॉल्ट, ड्रग्स डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, मिसकंडक्ट या फिर न्यूजीलैंड पुलिस दी इन्वेस्टिगेशन, ए तुहाडे हर तरह दे कानूनी मसले दे देणगे हल, ओ वी बिना किसे ढिल।
0: ए 9 साल न्यूजीलैंड पुलिस दे सीनियर प्रोसिक्यूटर रह चुके ने।
2: कॉल बैरिस्टर फारूक गुल केसरानी 02-2-3530-872।
3: अगर तुसी बीमारी नु जड़ तो खत्म करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि तुसी होम्योपैथी इलाज दी विधि अपनाओ। ऑकलैंड विच होम्योपैथी दे मशहूर डॉक्टर डॉक्टर प्रीत कई सालों तो प्रैक्टिस करदे आ रहे ने। डॉक्टर प्रीत गोल्ड मेडलिस्ट ने, हर तरह दी बीमारियां दा पक्का इलाज करवाउण लई अते प्रोफेशनल सर्विस लई अज ही संपर्क करो डॉक्टर प्रीत नु 2781106 ते या फिर 02112563563 ते या विजिट करो 415 ग्रेट साउथ रोड पपटोइट।
4: मदर्स डे खास मौके ते ग्लिटर ज्यूलर्स ने लगा दी है सेल ते तुहाडे लिए ले आए ने शानदार स्पेशल्स। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते सिल्वर ज्वेलरी दे उते बहुत सारे स्पेशल्स। ग्लिटर ज्यूलर्स जो कि 2x216 ग्रेट साउथ रोड मेनरेवा दे विच स्थित ने, हर रोज सवेरे 10 बजे तो लेके 5:30 बजे तक तुहाडी सेवा दे विच हाजिर रहंदे ने। नेक्स्ट टू एस बी बैंक, फोन 02244000 ते। ना फेसबुक ना ट्विटर, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਲਿਟਰ।
5: ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਮਿਲਟਨ ਲੇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਪੈਮਬਰੋਕ ਸਟਰੀਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਗ੍ਰੇ ਸਟਰੀਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਰੋਡੋਟੂਨਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਡਿਸਡੇਲ ਕਲੀਨਿਕ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਾਵਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਖਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 07839-0092, 07839-0092।

0: ध्यान नाल सुनो साउथ ऑकलैंड वाले, साउथ ऑकलैंड मोटर्स लेके आया है बिगेस्ट सेल एवर। हुन गड्डियां दी कीमतां ते वड्डा वार, बिग डील्स, बिग चॉइस, बिग सेविंग्स, हर बजट दी गड्डी लई वड्डी छूट ते बेमिसाल बचत। ए मौका हथों ना जान दियो। 11 मई तो 17 मई तक ही साउथ ऑकलैंड मोटर्स मैनको बॉटली अते पुकी कोई विखे अपनी मनपसंद दी गड्डी घरे ले जाओ सब तो वधिया डील्स दे नाल। विजिट करो southauckland motors.co.nz ते। fencingbhi karani hai te backyard space bhi vadhiya use ho jaye te kam bhi hi-fi hove. Pheer ta hi-fi definition fence and deck limited wale nu hi call lanne ha. Vekhi kidda kar di transformation hundi hai. Nale high-list skill team a unna kol. And kam hi-fi de naal budget friendly bhi hunda hai. College landscaping, decking and fence work layi yaad rakho high definition fence and deck limited. Fine, kavela, white x deck, aluminium or timber fence and gate. Enwing artificial grass, pavers jo chahe customize karwa sakde ho. GM for free codes, call 0204499 or email htfenceanddeck@theredgmail.com.
1: ग्रोसरी लेन जाना
2: एमपी
3: बीजी दी खुंडी तेरे रजाई भी लेके आनी है
2: एमपी
3: एक ही एमपी एमपी करी जाने हो
4: हर जरूरत दा सामान है एमपी सुपर स्टोर ते एमपी चक्की फ्रेश आटा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ते रेस्टोरेंट्स ते घर दी रसोई दा पूरा सामान मिलता है इन्हां नु कई बार बेस्ट एशियन बिजनेस दा अवार्ड भी मिलया है इंडिया तो सीधा सामान ले आंदे ने वेस्टर्न यूनियन ते पैसे भेज भी सकदे हो ते मंगवा भी सकदे हो थोकमा सौदा लैण ते होलसेल डिस्काउंट भी मिलता है 212 सेंट यूबन स्ट्रीट वेस्ट हेस्टिंग्स कॉल 0687891900 इन्हां दा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलो

0: जिंदगी दा सच है, एक दिन हर किसी नूं इस दुनिया तो रुखसत होना हुंदा है,
1: पर उस वेले सब तो जरूरी हुंदा है इज्जत मर्यादा ते पूरी सेवा दे नाल अंतिम विदाई।
0: ऑकलैंड विच सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज लेके आए ने पंजाबी फ्यूनरल पैकेजेस, जिथे ट्रांसफर तो लेके एम्बामिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, क्रीमेशन ते डेथ सर्टिफिकेट तक सारी जिम्मेदारी ओ संभालदे ने। टोटल पैकेज सिर्फ $4,299 तो शुरू।
2: उन्हें संपर्क करो शैलेन सिंह नो
3: 0272-929-776। सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज, अंतिम सफर विच पूरी इज्जत।
4: गुरु माट किचन वेयर होवे या फिर पूजा आइटम्स, जीवे के रुमाला साहिब, कृपाना, श्री साहिब, कछेरा, कड़े, सर्ब लोदे पांडे, गुरु साहिब दे हर साइज दे फोटो फ्रेम, मंदिर, मंजे, कुंडे, चकले वेल ने, न्यूजीलैंड सर्टिफाइड चुल्ले, मलमल दुपट्टे, रिटेल दे होलसेल, सब कुछ इको छत थल्ले। गुरु माट 1542-158 कोलमा रोड, पापा टोयटो, कॉल 0927722286 और व्हाट्सएप 0223172134 और विजिट gurumart.co.nz। nationwide shipping available।
5: visa apply karan to pehla raat nu neend nahi aundi si, fir swift visa and migration services limited walian ne file handle kiti, har step samjhaya। आज न्यूजीलैंड च जॉब है, फैमिली भी मेरे नाल है।
6: स्टूडेंट वर्क फैमिली AEWV ते रेजिडेंस वीजास, स्विफ्ट वीजा एंड माइग्रेशन सर्विसेज, ट्रंगा ऑफिस 150 द स्ट्रैंड CBD, हेस्टिंग्स ऑफिस 309A फ्रेमली एवेन्यू, कॉल सुखजिंदर सिंह 0226970651। सब दे सपने सच कर।
7: क्यों हार आ रहे ने, मिठाई कित्थों लेनी आ?
8: ले दस इको जगह है जिथे मिलती है देसी घ्यो दी शुद्ध मिठाई। मंडे टू फ्राइडे हर रोज नवे स्पेशल्स, कड़ी चावल, मसाला डोसा, राजमा चावल, पिज्जा, पनीर डोसा, शिवानीज रेस्टोरेंट, नाम ही काफी है।
7: shivani.co.nz ते जाके ऑर्डर ऑनलाइन करो। न्यूजीलैंड कितने भी शिवानीज रेस्टोरेंट 905 डोमिनियन रोड, माउंट रॉस्किन, 23 एरिक बेकर प्लेस, बाबा टोय टोय। बोले रिश्ते च मिठास, शिवानीज रेस्टोरेंट है खास। शिवानीज, वेयर टेस्ट मैटर।
9: जायदाद दा फैसला वड्डा हुंदा है, असी थानू दिंदे हां सही जायदाद दी सही जानकारी ते खरी खरी सलाह। ना सिर्फ वेचना, ना के खरीदना, सिर्फ रिश्ता बनाउणा। ईमानदारी अते भरोसे नाल अपने पेशेवर रियल एस्टेट सलाहकार नूं चुनो। कॉल करो हारकोर्ट्स मैनुरेवा दे भरोसेमंद रियलटर्स, नव ढिल्लों 0223049224 या फिर दलजिंदर पांगली 02